टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद रेट आदरणीय गायक ओगे सतुट मत नर्तन में वेदिका सजीवीकरण गायन शैल्य निशा ओगे बाइला सा अनिकुद गीत लोक प्रसिद्ध नाम बहुत पत्तुना इदस नम से हत्यावत असुवत दशक बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोट तिबु सरलत्व सतुट सा जनता व समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्व गता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल्दी ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल पायनियर्स अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय श्रासे मतक करना अमरणीय हांडा

सुनील शांत दस नम से पालवे उपतला दस नम से असु के साधारण वेन्व के श्रीलंका संगीत पुरोगामी अतिशय गौरव पात्र संगीत अन्य सह गायक ओ श्रीलंका संगीत स्वदेशीय रसे नव सुरवींसा निर्माणशीलत्व गिना आयक सिंगल संगीत स्वदेशीय हंडक नव मंपेतक सह सत्य रस गिना प्रमुख कलाकार ओगे गीत सरल गैंबुरु संवेदिसा श्रीलंकीय संगीत हदवतट लंगावन रसग्नवा संगीत अध्यापने गीत निर्माण सा सुरवीम तुल ओगे दायकत्व श्रीलंका संगीत इतिहास विशाल सटाण कला सुनील शांत के गीत अदत् असन विट श्रीलंकीय संगीत सत्य रसे निर्माणशीलत्व सा सौंदर्य तावमत जीवमान है

प्रिंस उदय प्रियंत दसम से हत्या उपतलवा दे दस दाते श्रीलंका विंग सदातम विन्वग्य जनप्रिय संगीत अतिशय संवेदी मृदु हदवत अतुलन गायके कुलस जना दरेट आदरणीय कलाकार ओगे गीतवल तिबु सेनेहस दुख मतक सुवंद सा सत्व बाय निसा ओगे हंड थावमत जनता ओगे सित्तुर जीवमानाई अणुव देदा दशके प्रेम गीतोल विशेष स्थानीय लबागत हो संदवतियाई मगे मनमाल्य संद तारका मले ओबमा हट दून सन्यास संद मले मगे मले वैनि गीत ओगे नामे अमरणीय करा ओगे गायन शैल्य सरल मृदु सा गीते हंगीम सुजुम प्रकाश करण विलासिताव की प्रीति बुना जीविते अभियोग अतरत ओगे संगीत जनतावट सिनेस सोये सा मतक सुवंदक लबा दुना प्रिंस उदय प्रियंत के गीत अदत असनविट सितट मृदु सोयक सिनेसक सा अमरणीय संवेदी रसयक लेबिनो

प्रिय सूर्यसेन श्रीलंका जनप्रिय संगीत अतिशय प्रियतम गायक दशक गणनावक जन हृदय लंगा कलाकार ओगे मृदु सुवदन संवेदी हंडत सरल गीत रसयत निशा ओगे गीत अदत जनप्रिय आयमी नोवी जीवमान पवतिन हत्या वसु दशके प्रेम गीत संवेदी गीत सा जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियता लबागत हो गायन शैली सरल नियतमानी सा हदवत सुजम लंगावेन विलासितावकिंग प्रीतिपूर्ण निशा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत सा वेदिका संगीत ओसे ओहु श्रीलंका संगीत अमरणीय सटाहनक तबुआ प्रिया सूर्यसेन के गीत असन विट अदत सितट सोयक सिनेहासक सा अमरणीय मतक सोंदक लबिनुआ